0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Ritveen, kya aap taiyar ho bhakti mein doob jane ke liye? भक्ति राज रामायण मंडली एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

एक इंसान ना दोस्तों, चाहे कितना भी खुश हो, कितना भी खुश अपनी जिंदगी को लेकर, अपने लोगों के साथ को लेकर, अपने वर्क प्रोफाइल को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, वो कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो सबसे ज्यादा उसी को याद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। कई बार हम गुस्से में कह देते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, या गुस्से में जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं हम उसे भी डांट देते हैं या कुछ कह देते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि यार सबसे ज्यादा मोहब्बत भी तो इसी बंदे से है ना। और फिर वो जो डांट है या जो जो एक आपका गुस्सा है वो सब किनारे होकर सिर्फ और सिर्फ वो याद रह जाती है जो उस अकेलेपन में उसकी आती है। और उसी याद के नाम है ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसे रूल बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते, है ना। यू कैन डू एनीथिंग, अपने रूल खुद बनाइए, किसी और को फॉलो मत कीजिए, अपने फॉलोअर सबसे पहले खुद बनिए। आजकल वो फॉलोइंग का जमाना है ना, हाँ, लेकिन सबसे पहले खुद को फॉलो कीजिए। अपनी रूल, अपनी लिमिटेशंस आपको खुद डिसाइड करनी है। किसी और के कहे अनुसार आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे, लेकिन जब आप अपने जिंदगी के मालिक खुद बनेंगे, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे, अपने रूल्स आप खुद बनाएंगे, अपनी लिमिटेशन सेट करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जिंदगी जो है वो आपके हाथों में है, उस पर कंट्रोल सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। और उसी कंट्रोल के नाम प्ले करूंगी अगला ट्रैक।
1: सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: A musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

दोस्तों कई बार ना वो लोग जो आपको बहुत पहले से जानते हैं आपको पहचान नहीं पाते हैं, वहीं आपको कुछ वक्त से जानने वाले लोग ना कई बार आपको आपसे बेहतर समझने लगते हैं। आपने किसी के साथ कितना वक्त बिताया है, कितना वक्त गुजारा है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने वो वक्त कैसे बिताया है ना। कितना लंबा कभी कभी वक्त हम एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता कि बंदे को खाने में क्या पसंद है। लेकिन कभी कभी बस कुछ मिनटों में आप एक इंसान के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि वो वक्त कैसे गुजरा है। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। Keep listening to Radio Brahmani 1701 AM, आपके साथ है सताक्षी।

ये था एक और इट हैपेंस का सफर रेडियो बिरसानी 1701 एम पर। और इस सफर में आज एक बार फिर से आपकी हम सफर सताक्षी दोस्तों आपके साथ थी। एक ऐसे ही सफर पर कल भी हम और आप साथ चलेंगे, एक और जर्नी पर, एक और सुबह की शुरुआत करेंगे साथ मिलकर। कल मुझे सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के सफर से अब विदा चाहती हूँ, इजाजत चाहती हूँ इस वादे के साथ कि कल फिर लौट कर आऊंगी। और जब तक मैं और आप मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे एंड इफ पॉसिबल गुड मॉर्निंग।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋ।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो। पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी आ, गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

लाइट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

हाँ जी जी एनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इसकी गल करनी तो बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी ते जिस इंसान नूं मिले सी मैं पहला दस्या सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दी गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा है। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया ओ कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है इस नाल पता चलदा है कि अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सिखी।

0: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane,
3: Yaar, Rahul,
2: Queensland.
3: Yaar, Rahul, tere case ka kya hua?
4: Yaar, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरे रजिस्ट्रेशन रेडियो बिस्वानी 101 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नो अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: गौरव कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स?

ऑर्डर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्ची निव्या के साथ। कैसा फील कर रहे हैं आप? जी हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज है ट्यूसडे और मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ताज़ा फील हो रहा है और उसके पीछे रीजन है, व्हिच आई एम गोना टेल यू। बट उससे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए आपको पता ही है क्या होता है। वेल ऑफकोर्स हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया गाने प्ले करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमारे इस 3 घंटे के लिए, और इनफैक्ट ये जो पूरे दिन की जद्दोजहद होती है, जो स्ट्रेस होता है, उससे आपको मुक्ति दिलाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। मतलब अगर आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, ये तब भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आप किसी चीज की शुरुआत नहीं भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज का, कोई चीज बहुत ज्यादा वे कर रही है आपके दिमाग पे, तो भी आपके लिए हेल्प करेगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स जस्ट डू इट। जी हाँ, शुरुआत करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सबसे पहले एक बढ़िया से गाने से शुरुआत होगी, और वो बढ़िया सा गाना है हंसी तो फंसी का, जहन सीब तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सीब। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम्हारी आवाज में कुछ खनक तो है, बताना जरूर कि ऐसा है क्यों। जी हाँ, वेल ऑफ कोर्स आई एम गोना टेल यू, लेकिन पहले गाना सुनते हैं, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो जरा मौसम का भी जिक्र कर लिया जाए, मतलब मौसम की तरफ रुख कर लिया जाए। क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर, बट फील आपको हो रहा है 20.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, यह है दिन की बात। रात की ही जाए तो 13 यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में आप गिरावट देख पाएंगे और चांसेस ऑफ रेन 50% थे, लेकिन अभी मुझे कोई बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर होगी भी तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, वो भी कुछ इलाकों में नॉर्थ ब्रिस्बेन के, बट उसके अलावा बाकी सब बढ़िया है। एयर क्वालिटी भी एकदम मजेदार यानी कि फेयर है। ये हुई आज की बात, चलते हैं कल की तरफ यानी कि ट्यूजडे एंड वेडनेसडे की तरफ। तो सबसे पहले मैक्सिमम यहां 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं और 50% चांसेस बारिश के भी हैं। वहीं वेडनेसडे को पूरी तरह से मौसम जो है वो खिला खिला और खुला खुला आपको नजर आएगा, और उसका वही मतलब है जो आप सोच रहे हैं, मतलब सूरज पूरी तरह से अपनी पावर के साथ आपको अपने आसमान में नजर आने वाला है और 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। मतलब अब जो है आप रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गर्मी देख पा रही हूं आने वाले दिनों में, क्योंकि थर्सडे तक टेम्परेचर जो है वो 27 से सीधा 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगेन जैसे मैंने कहा था कि स्प्रिंगी फीलिंग, लेकिन अब तो गर्मियां भी आ ही जाएंगी कुछ वक्त में। और गर्मियों के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए रहते हो, क्या वो मैंगो है मेरी तरफ, प्लीज बताइएगा जरूर। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, तो आप जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉक्सिक द मूवी की, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम बजट के साथ ये मूवी बनी है। जी हाँ, जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हो गई थी वेडनेसडे को, और आज इसे रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है। जी हाँ, और अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो उसका जो डाटा है वो आपको हम कल दे पाएंगे, लेकिन आज तक की बात करें, मतलब वेडनेसडे को रिलीज हुई थी तो वेडनेसडे को ही इसका डाटा आपको मिल पाएगा, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि रिकॉर्ड ओपनिंग जो है वो इसे मिली थी 55.40 करोड़। ये मूवी खुली थी, लेकिन उसके बाद फिल्म में जो है वो ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ही आता जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 500 करोड़ तक ही ना ठहर कर रह जाए। अब एक हफ्ता हो गया है ऑलमोस्ट, और ऐसे में मूवी जो है वो अपना आधा बजट भी नहीं कमा पाई है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि टॉक्सिक को जरा टॉक्सिक नजर लग गई है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि यश यानी कि KGF के सुपरस्टार की ये मूवी है, लेकिन इसका ट्रेलर जो है वो बहुत ही अजीबो गरीब था। जी हाँ, why am I saying it? अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा, एंड आई थिंक इंडियन ऑडियंस ऐसे ट्रेलर्स के लिए कभी भी रेडी नहीं होती है, फिर चाहे वो कहीं बेपी हो। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी नायिकाएं हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, और बहुत और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट द थिंग इज कि स्टोरी इटसेल्फ इज अ वीक, एंड द थिंग इज कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा उसे स्वैगी, ओवर स्वैगी बनाने की कोशिश की है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन। नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है, KGF से क्या किया था और इसमें क्या ही कर दिया। जी हाँ, सो यश को यहां पर काफी बैकलैश भी मिल रहा है कि कैसी मूवी का पार्ट बन गए भाई, तुमने KGF की, KGF के बाद तुम्हें अपना दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए था, यहां कहां पहुंच गए। बट जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए के बजट में ये बनी है, और अभी तक इसने सिर्फ और सिर्फ 125 यानी कि 285 करोड़ के करीब ही कमाई की है, जो कि एक हफ्ते में बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि पहले 2 से 3 हफ्तों में ही सबसे ज्यादा कमाई करके मूवी जो है वो अपने आगे की तकदीर तय करती है, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही होता जा रहा है। सो ऐसे में टॉक्सिक का भारी भरकम बजट क्या डूब जाएगा दरिया में, या फिर ये शाइन कर जाएगी, वेल वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए यही लग रहा है कि 500 करोड़ तक या 600 करोड़ तक ही एटमोस्ट ये मूवी जो है वो ठहर कर ना रह जाए। और ऐसे में अगर कोई नॉर्मल मूवी होती जो 500-600 करोड़ कमा लेती तो उसके लिए बढ़िया बात हो जाती, बट जो मूवी ही ऑलमोस्ट 1000 करोड़ में बनी है उसके लिए ये चीज बहुत ही गलत साबित हो सकती है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही है रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। और दोस्तों इसी के साथ आपके फेवरेट प्लेयर लियोनेल मेसी या द लेजेंडरी फुटबॉलर ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। आई नो देर आर मेनी मेसी फैंस इंक्लूडिंग मी, मैं भी काइंड ऑफ मेसी फैन हूं और मुझे भी ये चीज हर्ट कर रही है। जी हाँ, सो जो मेसी हैं वो क्लब फुटबॉल में तो जो है वो खेलते रहेंगे और उसके बारे में उन्होंने ऐसा सच कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उनके पिता की डेथ भी बताई जा रही है, जो भी कुछ वक्त पहले ही हुई है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने पिता के बहुत ज्यादा करीब थे हमेशा से और उनके पिता उन्हें हमेशा से चेयर करते आए हैं। और जब उनके पिता की डेथ हुई तो उन्होंने तब भी ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि इसके बाद अब मैं कब तक फुटबॉल खेल पाऊंगा। बट या उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली भी, एंड व्हेन आई से प्रोफेशनली आई डोंट मीन क्लब फुटबॉल बट आई मीन द इंटरनेशनल फुटबॉल, उन्होंने उससे रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में कहा और अपने फैंस को इसके बारे में जो है उन्होंने बताया कि कैसे ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली चीज है, क्योंकि वो जर्सी जो अर्जेंटीनियन जर्सी है जिसके लिए उन्होंने बहुत साल खेला है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पल भी देखे हैं, कुछ बुरे पल भी देखे हैं, और वो यादें उनके साथ हमेशा ही रहने वाली हैं। और ये डिसीजन उन्हें हर्ट कर रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर लाइक नो वे बिकॉज यू नो इवन इन दिस वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी बहुत ही अच्छा खेले हैं। मतलब आप उन्हें देख के कह नहीं सकते हो कि ये बंदा रिटायर होने के लिए रेडी है। ऑल्दो उनकी एज के हिसाब से वो रिटायरमेंट हम पहले से ही देख पा रहे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छे से खेला और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अभी भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, वे बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द यू नो होल टीम। सो ऐसे में ये फैसला एकदम से लेना, डेफिनेटली इसके पीछे उनके पिता की डेथ का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं पता कि अब इसके बाद मैं कितना ही फुटबॉल खेल पाऊंगा। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फादर, क्योंकि उनके पिता हमेशा उन्हें चेयर करने पहुंच जाते थे। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, लेकिन आप मुझे बताइएगा जरूर अगर आप भी मेसी के फैन हैं, क्या आपको भी बुरा लग रहा है जितना मुझे लग रहा है? लेकिन अगेन, जैसे क्लब फुटबॉल में आप उसे देख पाएंगे उन्हें, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में नाउ देर आर नो चांसेस नाउ। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जो दोस्तों ये कहना कि आई लव साइंस, आई लव इन्वेंशंस, और जो लोग इन्वेंट करते हैं नई नई चीजें, आई लव देम टू, ये गलत नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि नीवेश शर्मा इसके बारे में क्यों बात कर रही हो। वेल, अभी कुछ दिन पहले ही एक रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है, और वो रिस्ट बैंड अपेरेंटली उन लोगों के लिए है जो तैरना जानते हैं लेकिन पानी में जाके पैनिक कर जाते हैं, या किसी भी वजह से जो है वो स्विम नहीं कर पाते, मतलब उन्हें तैरना आता है और वो उतरते हैं पानी में और वो एकदम से पैनिक करने की वजह से ड्रोन कर जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हादसे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हमें ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे बहुत सारे हादसे देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से आप तैर नहीं पाते, हेल्प बहुत ज्यादा लेट आती है, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है इस चीज का शिकार होते हैं, डूबने का शिकार होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए क्योंकि हेल्प बहुत ज्यादा लेट आती है, या किसी भी और रीजन की वजह से जो है वो तैर पाने में ज्यादा, या अपने मंजिल तक पहुंच पाने में जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं, और उस वजह से डूबने का यहां पर मंजर जो है वो बन जाता है। सो ऐसे में एक कंपनी है जिसने एक रिस्ट बैंड बनाया है जो कि लिटरली बचा सकती है लोगों की जान। जी हाँ, सो जापान का ये इन्फ्लेटेबल सेफ्टी डिवाइस जो है वो डिप्लॉय करता है इंस्टेंटली इन वाटर एंड सपोर्ट्स अप टू 124 kg, मतलब 124 किलो तक का बंदा जो है वो इससे फ्लोट कर देगा। बेसिकली रिस्ट बैंड है ये, लेकिन जब इस पे क्लिक किया जाता है तो इसमें एक गुब्बारा से बन जाता है, और वो गुब्बारा जो है वो सीधा पानी के ऊपर किसी इंसान को ले जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। वो तब तक उसे बचाए रखता है जब तक हेल्प नहीं आती, या देयर आर नो टाइम लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ देर तक ही ऐसा होगा, जब तक हेल्प नहीं आती तब तक ये कर सकता है। नो हैवी लाइफ जैकेट जो कि कभी कभी काम नहीं करती, नो यू नो एनी अदर गैजेट, बट ये रिस्ट बैंड। देयर आर मेनी पीपल जो कि अगेन जैसे मैंने कहा कि डूबने का शिकार हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो तैरना नहीं जानते, वो तैरना जानते हैं बट देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से पैनिक हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है। सो ऐसे में उन्हीं लोगों के लिए इसे बनाया गया है। ये कंपनी कह रही है कि आपको अगर पूल पर जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तब भी आप इसे पहनिए। अगर आप समुंदर में जाके डाइव लेना चाहते हैं तब भी इसे पहनिए। बेसिकली पानी में उतरते हैं तो उसे जरूर पहनिए, चाहे फिर आप कितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो, बिकॉज इट कैन हेल्प समवन जब वो ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए जो कि उनके हाथों से परे हो। सो ऐसे में ये इन्वेंशन तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्वेंशन की जरूरत जो है वो हर एक कंट्री को है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हमें यही वाला डिवाइस इसी कंपनी का लेना चाहिए, आई एम नॉट इवन गोना नेम द कंपनी, बट द थिंग इज कि ऐसे इन्वेंशन कितने सारे लोगों की जान बचा सकती है। समर्स आते हैं, लोग जो है वो सीधा समुद्र यानी कि ओशंस और सी की तरफ भागते हैं या पूल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डूबने का शिकार हो जाते हैं फॉर डिफरेंट रीजन। सो ऐसे में ये उन लोगों की जान बचा सकती है। दिस रिस्ट बैंड इज लिटरली रेवोल्यूशनरी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420933171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
1: अरे वाह इनका पता बताना
2: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5 1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420933171 वेबसाइट www.arshadlawyers.com We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
5: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो
6: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999 open 7 days find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au 1/268 Kingston Road Slacks Creek phone number 3804-3818 that's 3804-3818
7: Digicel better together
8: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
9: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और शो जो कि आया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ वक्त पहले, लेकिन अगेन मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और तो उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प नहीं है, मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि प्यार जो है आपको जिससे है और आपको ऐसा लगता है कि बस इसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले हो, लेकिन फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है और आप भी कहीं पर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाते हो, और लेकिन उसके बाद आपको एक और जो है वो शख्स मिलता है, आप उसके साथ भी अच्छी ट्यूनिंग शेयर करते हो, लेकिन वो वाली बात जो पहले इंसान के साथ थी वो नहीं आती और वो पहला इंसान फिर से एंट्री मारता है। जी हाँ, मुसाफिर कैफे की मैं बात कर रही हूँ। क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वो अभी भी ट्रेंड कर रहा है, और ना सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, लाइक एवरीवन, प्रीटी मच एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। अगेन आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि निवेश शर्मा ये तो मतलब एंटरटेनिंग उतना नहीं लग रहा, ये हमें ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जा रहा है इमोशंस की जो कि शायद हमने बहुत वक्त से देखी भी नहीं होंगी। आई नो बट द सॉन्ग, द म्यूजिक एंड यू नो ऑल द यू नो सिनेरियो जो उसमें क्रिएट किया गया है, एंड विक्रांत मेसी इसमें आपको मिलने वाले हैं, व्हाट एल्स कैन आई से। और दो और नायिकाएं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है वो आपको इसमें मिलने वाली है। वॉच इट एंड लेट मी नो क्या आपको भी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड देखने को और फील करने को मिली या नहीं मिली जरूर बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं, सीधा रुख करते हैं खबरों का। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, समाचार यानी कि न्यूज की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड पे क्या हो रहा है और क्या हो रहा है वॉर फ्रंट पे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेपाल से, क्योंकि नेपाल में जो बाढ़ आई है उसका जो आफ्टरमाथ है वो अभी तक लोग वहां पर झेल रहे हैं। जी हाँ, सो नेपाल की बाढ़ में अब तक सबसे ज्यादा शव चितवन में मिले। जी हाँ, 282 तक पहुंचा आंकड़ा। बुधवार को नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशुली में आए विनाशकारी बाढ़ में मारे गए लोगों के शव लगातार मिल रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने बताया कि अब तक सबसे अधिक शव चितवन में मिले और रसुवा से लेकर नवल परासी पश्चिम तक 8 जिलों में शव बरामद हुए हैं। नेपाल पुलिस की अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक कल शाम तक मृतकों की संख्या 951 हो गई है। पुलिस के मुताबिक इनमें 282 शव चितवन में मिले हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल शुरुआत से ही खोज बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश करने और सड़क पर मौजूद बाधाओं को हटाने के लिए भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसी के साथ और दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं, प्रवासी हैं, उनके भी शव सौंपने का कार्य जो है वो नेपाल अब शुरू कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और नेपाल की बाढ़ की बात हो रही है, जो कि लिटरली बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो चाइना की वजह से हुआ है, क्योंकि चाइना ने वहां पर एक ड्रिल की थी जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक हुआ, और अर्थक्वेक के होने के बाद वो ग्लेशियर जो है वो नीचे आया और वो लेक्स जो है वो फ्लड की, और उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी त्रासदी लोगों को देखने को मिली। चलिए, इसके बारे में तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर ही रही है तहकीकात, लेकिन यहां पर नेपाल ने तय की विदेशी शवों को सौंपने की प्रक्रिया। भारतीय दूतावास ने क्या बताया है, आइए जरा जानते हैं। नेपाल ने पिछले सप्ताह बुधवार को आई भीषण बाढ़ में मारे गए विदेशी लोगों को शव को सौंपने के लिए प्रतिक्रिया तय कर दी है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी है। नेपाल सरकार के मुताबिक विदेशी नागरिकों के शव उनके परिवारों को सौंपने के लिए कई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इनमें शव के संबंधित दस्तावेज तैयार करना, शव की तस्वीरें और अन्य विवरण दर्ज करना, पोस्टमार्टम जांच, मौत के कारण की पुष्टि शामिल है, फिंगरप्रिंट, डीएनए या खून के नमूने लिए जाएंगे। साथ ही दूतावास और नेपाली अधिकारियों के बीच को ऑर्डिनेशन भी पूरी करनी होगी। शव सौंपने, जारी करने से जुड़े दस्तावेज और रसीद की प्रक्रिया भी करने होंगे। इनमें शव के संबंधित दस्तावेज तैयार करना, शव की तस्वीरें और अन्य विवरण दर्ज करना, पोस्टमार्टम जांच, मौत के कारण की पुष्टि नेपाल सरकार के अधिकारी करेंगे। अगर मृतक के रिश्तेदार और परिवार वाले नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध मृतकों की तस्वीर और विवरण के जरिए शव की पहचान कर सकते हैं, तो काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके शव सौंपने और भारत भेजने की प्रक्रिया में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने कहा कि बड़ी संख्या में शवों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए नेपाल सरकार ने शवों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है। इन शवों की पहचान पहले दर्ज किए गए निकटतम रिश्तेदारों के डीएनए से मिलान करके की जाएगी। अगर शव की पहचान संभव नहीं हो पाती है या शव को अस्थायी रूप से दफना दिया गया है, तो नेपाल सरकार डीएनए मिलान की प्रक्रिया में मदद करेगी। नेपाल में अधिकारी शवों से डीएनए के नमूने ले रहे हैं ताकि डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा सके। डीएनए मिलान के लिए मृतक के पहले दर्ज के रिश्तेदार ईमेल के जरिए अपना डीएनए प्रोफाइल भेज सकते हैं या खून का नमूना दे सकते हैं। इसके लिए नेपाली अधिकारियों की ओर से कुछ शुरुआती जानकारी मांगी जा सकती है। भारतीय दूतावास की मदद से पहले दर्जे के रिश्तेदारों के डीएनए प्रोफाइल भी एक निर्धारित ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं। डीएनए प्रोफाइल से संबंधित पूरी जानकारी नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर जारी किया गया है।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
14: सासों की माला पे सिमरूं मैं.
15: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
14: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
15: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.
12: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
16: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
12: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
16: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
17: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
18: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
17: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
18: अरे ओम सॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
17: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
18: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
17: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
18: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वहीं दोस्तों, खबरों का सिलसिला जो है वो चल रहा है और ईरान पर सीमित हमले की योजना बना रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने अधिकारियों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सीमित हमला करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए ईरानी मिसाइल और रडार क्षमताओं पर सीमित हमले करने पर विचार कर रहे हैं। बीबीसी फारसी ने एक्सियोस की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी शीर्ष सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट में सीमित हमला करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो ईरान की रडार और मिसाइल क्षमताओं को दोबारा खड़ा होने से रोकना चाहते हैं। इस बीच सोमवार की रात ईरान में अमेरिकी हमलों में 3 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के लाराक द्वीप पर 2 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। बीबीसी को एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी कि जुलाई के बाद ईरान पर अमेरिका का यह पहला ज्ञात हमला था।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनकर आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी होता है, इसकी तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वेल, आप लोगों को भी अगर अपना फोन गिराने की आदत है और कभी कभी आपके फोन के स्क्रीन गार्ड पर क्रैक्स आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, मतलब हम फोन गिराते क्यों रहते हैं और कोई भी कवर उसको अच्छे से संभाल क्यों नहीं पाता है, मतलब हम कितने भी कवर लगाएं लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही जाता है। लेकिन क्या मैं अगर आपको बताऊं और अगर मैं आपको बताऊं तो कैसा आपको फील होने वाला है कि एक बंदे ने मतलब एक फोन को गिराया गया 30,607 मीटर्स की ऊंचाई से और उसके बाद वो फोन जो है सर्वाइव कर गया विदाउट पैराशूट। या आप ध्यान से सुनिए, मतलब और लिटरली मतलब स्पेस के एज से एक फोन को गिराया गया और वो 25 मिनट्स का फॉल था, जी हाँ फ्री फॉल था, जिस फोन के गिरने के बाद भी वो फोन जो है सर्वाइव कर गया और उस फोन में एक भी क्रैक नहीं आया बल्कि उसका सारा का सारा प्रेशर उसका वो कवर ले गया। आप लोग बोलोगे कि नीवियर शर्मा तुम बाकी सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन सा कवर है जो ये कर रहा है, मतलब हमारे कवर तो कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ही बचा पाते हैं, हम तो यहां वहां फेंकते रहते हैं, इधर गिर रहा होता है उधर गिर रहा होता है, लेकिन हमारे फोन्स तो ऐसा कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इमेजिन नाउ, ऑफकोर्स ये एक बहुत ही अजीबो गरीब और यूनिक कवर है, ऑफकोर्स मैं उसके नाम नहीं लेने वाली हूँ, बट यहाँ पर ये कवर जो है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई नॉर्मल फ्री फॉल नहीं था, आपने इंसानों का फ्री फॉल तो सुना होगा लेकिन यहाँ पे फोन का फ्री फॉल भी आप सुन लीजिए, जो कि लिटरली स्पेस के ऑलमोस्ट स्पेस के एज से हुआ है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये एक iPhone 17 प्रो था जिसको रीनो शील्ड एयर एक्स केस में जो है वो लपेटा गया था, मतलब उस कवर में उसे लगाया गया था और फिर उसके बाद उसे हाई एल्टीट्यूड बैलून से स्वीडन के ऊपर जो है विदाउट पैराशूट जो है वो फेंका गया। 25 मिनट्स का फ्री फॉल रहा और उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर के बावजूद जो फोन जो है वो रिकवर कर गया इंटैक्ट। जी हाँ, स्टिल पावर्ड एंड फंक्शनिंग, मतलब अभी भी वो चल रहा है और बिंदास चल रहा है वो फोन। जी हाँ, बट ऑफकोर्स वो रियल सीक्रेट सिर्फ वो कवर नहीं था, वो टर्मिनल वेलोसिटी भी थी और सॉफ्ट स्पेडिश ट्रेन भी थी जिसकी वजह से काफी इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। ऑफकोर्स जो फोन का कवर था उसने काफी सारा जो फोर्स है उसने अब्सॉर्ब कर ली, बट उसके बावजूद भी मतलब लिटरली इतनी ऊपर से फोन का गिरना और उसमें एक क्रैक नहीं आना। मेरा तो बेड के नीचे गिर जाता है तो उसी में क्रैक आ जाता है। जी हाँ, मतलब हमने तो ऐसे कुछ देखा ही नहीं। मुझे लगता है वी नीड दिस फोन केस इन एवरी कंट्री। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ हमारा फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है। जी हाँ, ऑफिशियली शुरू हो रहा है क्योंकि वक्त हो गया है और घड़ी ने भी इशारा कर दिया है, घड़ी भी कह रही है कि निव्या शर्मा बस अब बस चलो सीधा शुरू करो सेगमेंट हमारा फेवरेट। एंड आई वॉज लाइक या नेकी और पूछ पूछ। सो यहाँ पर ये सेगमेंट शुरू कर रहे हैं हम ओल्ड इज गोल्ड। इफ यू डोंट नो अबाउट ध्यान से सुनिए, ये सेगमेंट है पुराने गानों से रिलेटेड, पुराने गानों को डेडिकेट किया गया है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने प्ले करते हैं, कुछ हमारी तरफ से कुछ आपकी फरमाइशें, और ऐसे ही ये सेगमेंट इतना हसीन बन जाता है कि इतना हसीन तो आपने किसी का चेहरा भी नहीं देखा होगा। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले गाने के साथ, और वो है महबूबा महबूबा महबूबा। आहा, जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

लेकिन आपने एक चीज देखी है कि ये जो मूवी है वो है धर्मवीर, और इसमें जो लुक है धर्म पाजी का वो बड़ा ही फनी है। लेकिन वो फनी इसलिए है कि है तो ये इंडियन मूवी, लेकिन इस मूवी का लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रीक है। मतलब ग्रीक लोग, जब ग्रीक हीरोज, ग्रीक सोल्जर्स, और वो एंशियंट ग्रीक पीरियड जो था उसमें लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहना करते थे, उनके पैरों की जो चप्पल होती थी वो वैसी होती थी, एकदम ग्लैडिएटर्स टाइप की। और ये जो ग्लैडिएटर लुक यहाँ पर दिया गया है धर्म पाजी को, ये बड़ा ही फनी है। आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार इस मूवी में धर्म पाजी का लुक देखा था, आपको क्या लगा था? आपको लगा था कि ये क्या पहना दिया फ्रॉक धर्म पाजी को? वेल, इट्स नॉट अ फ्रॉक, इट्स अ एंशियंट सोल्जर आउटफिट फॉर अ ग्रीक हीरो और अ ग्रीक पर्सन। जी हाँ, और ग्रीक पहले ऐसे ही कपड़े, और रोमन्स भी इनफैक्ट पहले ऐसे ही कपड़े पहना करते थे, ग्रीक्स एंड रोमन्स। अगेन, धर्मपाजी को ऐसे लुक में देखना थोड़ा सा फनी जरूर था, बट या इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला गाना जो है वो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मेरी तरफ से नहीं है, वो है मेरी बहुत ही खास लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। अब ये गाना जो है वो हमारे पास पहले ही आ गया था, हम इसे प्ले नहीं कर पाए थे, हम इसे आज कर रहे हैं, क्योंकि मैं दो दिन से यहाँ पर नहीं थी, मैं दो दिन से कहीं गई हुई थी, एंड दैट वॉज द रीजन जब आपने मुझे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में सुना, आप खनक सुन पा रहे थे। क्योंकि जब भी आप रिजुविनेट होने के लिए कहीं जाते हो, उसके बाद आपकी आवाज बदल जाती है, सब कुछ ऐसा हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। सो आज मुझे वापस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरे लिसनर्स से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वो खनक इसीलिए मेरी आवाज में थी, एंड दैट वाज द रीजन हम ये फरमाइश नहीं प्ले कर पाए थे। लेकिन क्योंकि ये हमें हो चुकी है पहले ही फरमाइश, तो हम इसे करने वाले हैं प्ले। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, प्यारे प्यारे गाने हमें भेजने के लिए। बिना देर किए शुरुआत में ही आपका ये गाना हम प्ले करेंगे, और इसी के साथ आप लोगों के पास भी कोई फरमाइश है तो जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है और जल्द ही प्रोग्राम खत्म होने वाला है, और ये सेगमेंट भी।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों, खाने का शौकीन मैं भी बहुत हूँ और खाने के शौकीन रवि साहब भी बहुत है। आप लोग बोलोगे कि वाह वाह, निवा शर्मा कहाँ अपने आप को लेकर आ रही हो, राइट? वेल, कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो खाने के शौकीन होते हैं। सो अगर आप लोगों को खाना नहीं पसंद है तो फिर आई थिंक वहां पे थोड़ी बहुत झोलबाजी चल रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक शूटिंग के लिए और एक रिकॉर्डिंग के लिए रफी साहब और उनके बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज जो हैं वो कहीं जा रहे थे और जाते जाते उन्हें रास्ते में एक जगह दिखती हैं कुछ महिलाएं जो कि ठेचा यानी कि मिर्च और मूंगफली की चटनी से बनी हुई चीज जो है बहुत ही यमी सी चीज होती है। बेसिकली आई डोंट नो अगर आपने उसे खाया है कि नहीं खाया, बट एक चटनी बनती है जो कि मिर्च और साथ में धनिया और साथ में मूंगफली को जो है जब ग्राइंड कर दिया जाता है रोस्ट करके, फिर उसके बाद जो है उसको खाया जाता है ज्वार भाकरी के साथ। वो महिलाएं जो है वो सड़क किनारे वही बना रही थी और वही बेच रही थी। अब इतने सारे लोग थे वहां पर, उनमें से किसी ने नहीं कहा, लेकिन रफी साहब को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया उस ज्वार भाकरी में और उस ठेचा चटनी में। उन्होंने क्या किया? वेल, ऑफ कोर्स वो उतरे और उन्होंने उस ठेचा चटनी को और ज्वार भाकरी को खाया और वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने वहां पर जितनी भी महिलाएं थी उन सबको 100-100 रुपए देने की कोशिश की। लेकिन जब महिलाओं को ये पता चला कि ये मशहूर सिंगर रफी साहब है और वो इतने अच्छे हैं और उन्होंने देख रफी साहब हाँ भी कुछ भी टेस्टी दिखता था वो खा लेते थे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वेल, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है और सुनते रहना है रेडियो ब्रिस्वानी को

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

पर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: बेटा आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन ब्लेज की नई स्क्वाड घोषित। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट के लिए ब्रिस्बेन ब्लेज ने अपनी मेंस और वुमेन्स टीमों के अंतिम खिलाड़ियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वहीं रिवरगेट मरीना के 20 साल पूरे। ब्रिस्बेन रिवर पर स्थित मशहूर रिवरगेट मरीना एंड शिपयार्ड ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसी के साथ ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2032 की तैयारियां तेज। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम आज से और तेज कर दिया गया है ताकि नए स्टेडियमों तक कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। वहीं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का नया साइंस सेंटर। ब्रिस्बेन की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने अपने कैंपस में एक अत्याधुनिक नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है जो क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करेगा। वहीं साउथ बैंक में स्प्रिंग कल्चर फेस्ट। ब्रिस्बेन के साउथ बैंक इलाके में बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के स्वागत के लिए रंगारंग सांस्कृतिक फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जहां वीकेंड पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। वहीं ग्रेटर ब्रिस्बेन में मौसम का मिजाज। ब्रिस्बेन मौसम विभाग के अनुसार आज शहर में धूप खिली रहेगी और दिन का तापमान सुहाना रहने वाला है। जी हां, तटीय इलाकों में हल्की हवाएं भी चलने का अनुमान लिया गया था। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ में भारत का धमाका। देश के अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.8% दर्ज की गई है। ये शानदार आंकड़े से बाजार में खुशी का माहौल है। वहीं एससीओ समिट में भारत चीन की मुलाकात। किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाया। वहीं मुंबई में लोकल ट्रेनों का नया टाइम टेबल। अगर आप मुंबई में जाने की सोच रहे हैं या लोकल ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो आज से रेलवे ने अपना नया टाइम टेबल लागू कर दिया है। वहीं मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ी। मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले की जेब पर थोड़ा असर पड़ सकता है। महानगर गैस लिमिटेड ने आज यानी 1 सितंबर से सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति एससीएम बढ़ा दिए हैं। वहीं भारतीय नौसेना में आईएनएस निपुण शामिल। भारतीय नौसेना की ताकत में आज इजाफा हुआ है। नौसेना में नया डाइविंग स्पोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू पोत आईएनएस निपुण आधिकारिक तौर पर कमीशन पर लिया गया है। वहीं अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें वायरल इन्फेक्शन और हाइड्रेशन की शिकायत है। वहीं अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट में एक बार फिर स्थिति संवेदनशील हो गई है। अमेरिका ने ईरान के लारक आइलैंड पर रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया जिसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं उज्बेकिस्तान और भारत में ट्रेड डील। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $5 अरब तक पहुंचाने पर सहमति बनी है। वहीं चीन से नेपाल लौटे भारतीय नागरिक। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि चीन से 403 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल सीमा में दाखिल हो चुके हैं। बाकी 500 भारतीय भी चीन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं 6वें वर्ल्ड नोमेड गेम्स का आगाज। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम्स का शानदार उद्घाटन हुआ। इस अनोखे खेल आयोजन में दुनिया भर की पुरानी और पारंपरिक खेल संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। वहीं जेएनके का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर सरकार का सूचना विभाग 7 से 10 सितंबर तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगी सिनेमा आयोजित करने जा रहा है।
वहीं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बीते दिन आए भूस्खलन के बाद अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा टीम में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए रात दिन जुटी हुई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले लियोनेल मेसी का संन्यास। फुटबॉल जगत के महानतम खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 20 साल के अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप और 2 कोपा अमेरिका जिताने के बाद मेसी ने अपने बूट्स टांगने का फैसला कर लिया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी का नया रिकॉर्ड। 15 साल के युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वह दिल्ली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महिला एशिया कप में भारत की जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। भारत ने थाईलैंड को 94 रनों के बड़े अंतर से हराया। वहीं जर्मनी ने जीता हॉकी वर्ल्ड कप। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं टेबल टेनिस के अंकुर भट्टाचार्य को गोल्ड। भारत के टेबल टेनिस स्टार अंकुर भट्टाचार्य ने चेकिया में चल रहे WTT फीडर टूर्नामेंट में अपना पहला मेंस सिंगल्स खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी

एलिवेट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

ताजे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420933171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420933171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
5: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
6: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
7: Digicel, better together.
8: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेस फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस सब

0: पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम जोग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमजोर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमजोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omzorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमजोर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

न बदला में न बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

स्टेजों पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं होती, वो गाई जाती हैं, और जब वो गाई जाती हैं तो कव्वाली बन जाती हैं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इस नू तैयार किया। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

Catholic Church presents special परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं.

0: This is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

ना बदला में, ना बदला।

एलिवेट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

हरे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। सारे विश्व भर में अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, कई प्रकार के आध्यात्मिक कार्य किए जा रहे हैं और ये सभी कार्य एक भव्य उत्सव का भाग बनने वाली है। जो श्रद्धालु होते हैं वो श्री कृष्ण का नाम तुलसी की माला पर करते हैं, मंदिर को सजाते हैं तथा दूध, दही, घी, मीठा जल ऐसे शुद्ध और शुभ पदार्थों से वे भगवान की श्री मूर्तियों का भव्य अभिषेक भी करते हैं। वे अनेकों प्रकार के अद्भुत व्यंजन तैयार करते हैं और उन्हें भगवान को अर्पण करते हैं उनके ही दिव्य प्रसन्नता के लिए, और फिर बाद में भगवान की कृपा के रूप में यही प्रसाद वे सभी लोगों में बांटते हैं और स्वयं भी इस प्रसाद का सम्मान करते हुए वो ग्रहण करते हैं। इन अनेकों प्रकार के कार्य करते हुए भी श्री कृष्ण के इस आविर्भाव दिन पर वे मध्य रात्रि तक उपवास भी करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उपवास करना एक प्रकार की तपस्या है और ऐसे शुभ दिन पर ऐसी तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ऐसा करने से अपार आध्यात्मिक लाभ होता है और ये आध्यात्मिक लाभ ये है कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यदि हम कृष्ण या भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, यही इसका अर्थ होता है। तपस्या का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु से स्वयं असुविधा अपनाना। तो जन्माष्टमी एक बहुत ही विशेष दिन है जब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। भगवान वास्तव में अजन्मे होते हैं। कृष्ण को अज कहते हैं, अर्थात वो जिसका जन्म नहीं होता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं। कभी काल वो सीधा आध्यात्मिक जगत से यहां प्रकट होते हैं और कभी कभी वे मनुष्य का रूप धारण करते हैं और यहां जन्म लेते हैं। क्या कृष्ण को जन्म लेने की आवश्यकता है? ना, उसे नहीं है। यदि उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों कृष्ण जन्म लेते हैं? ये इसलिए क्योंकि कुछ भक्तगण कृष्ण को बाल रूप में चाहते हैं, कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में चाहते हैं। जो भी कुछ एक भक्त चाहता है, कृष्ण उस भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। यदि उसकी इच्छा होती है कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करना, तो कृष्ण उनका पुत्र बन जाता है। यदि वो श्री कृष्ण को मित्र के रूप में चाहता है तो वो उनके मित्र बन जाते हैं, और कभी काल तो वे अपने भक्तों के सेवक भी बन जाते हैं। जिस प्रकार से वो सेवक बन गए थे जब वे अर्जुन का रथ चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि भक्त चाहते हैं कृष्ण उनके सेवक बन जाए, परंतु कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ये एक प्रेम का आदान प्रदान है। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि ये भक्त उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, तो कृष्ण विचार करने लगते हैं कि वो अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। इतने महान है श्री कृष्ण, क्या कभी कोई भी बहुत ही धनवान व्यक्ति हमारा सेवक बन सकता है? क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि ऐसे धनवान लोग हमारे सेवक बने? वो बहुत बड़े लोग होते हैं, परंतु हम कभी ये आशा नहीं कर सकते कि वे हमारे सेवक बन जाए। परंतु यदि आप कृष्ण को देखें तो वे तो स्वयं भगवान है। वो इस जगत के कर्ता है, जगत के स्वामी है, जगत के पालनहार है। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कृष्ण हमारा सेवक बन जाए? ये कितना असंभव है। परंतु कृष्ण अपने भक्तों का सेवक बन ही जाता है। अपनी ओर से कृष्ण ऐसे ही करते हैं, यही कृष्ण का अनोखा चरित्र है। भले ही कृष्ण कितने ही महान है, जब अपने भक्तों के लिए कुछ करने की बात आती है तो वो उनके लिए तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण का व्यवहार उनके मित्र सुदामा विप्र से, सुदामा और कृष्ण एक दूसरे के मित्र थे। उनकी पढ़ाई के बाद गुरुकुल में कृष्ण मथुरा को चले गए। वहां वे राजकुमार थे
और बाद में मथुरा से वे द्वारका को प्रस्थान कर दिए। अब सुदामा तो एक ब्राह्मण थे और आमतौर पर ब्राह्मण निर्धन होते हैं। उन दिनों ब्राह्मण लोग धन में दिलचस्पी नहीं रखते थे, धन एकत्र करने के लिए वो कोई प्रयास ही नहीं करते थे, तो सुदामा का जीवन अत्यंत दीनहीन था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि तुम क्यों कृष्ण के पास नहीं जाते, वो तो राजकुमार है, वो राजा है, आप इतना कुछ उनके विषय में चर्चा करते रहते हैं, आप वहां जाइए और ऐसा संभव है कि आपको उनसे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। तो सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिए, परंतु सुदामा धन नहीं मांगना चाहता था। उन्होंने सोचा कि उनके मित्र कृष्ण को मिलने के लिए यह बड़ा ही सुंदर अवसर रहेगा, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए वे द्वारका गए, जहां उन्होंने कृष्ण का वैभव देखा। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था, परंतु जब वे कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उन्हें अपने ही सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण को धोया। तो अपने भक्तों के साथ कृष्ण इस प्रकार से पेश आते हैं, इतना वैभवशाली होते हुए भी एक भक्त के चरण धो रहे हैं। इसी कारण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के प्रति भक्ति बढ़ानी, कृष्ण का भक्त बन जाना। कृष्ण भक्त का अर्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाना। क्या कृष्ण प्रेम बढ़ाना कठिन है? क्या हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं? क्या हम किसी को प्रेम नहीं करना चाहते हैं? जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने माता पिता, मित्र और पालतू पशु के प्रति भी प्रेम का अनुभव करता है, ये स्वाभाविक है कि जो हमारे निकट हो उनके प्रति हम प्रेम का अनुभव करें। तो कृष्ण प्रेम उदय करना क्या कठिन है? यदि किसी को प्रेम करना कठिन नहीं है तो क्या कृष्ण के प्रति प्रेम कठिन होगा? किसी पर प्रेम कैसे हो जाता है? उदाहरण के रूप में एक मित्र को ले लीजिए, क्या उनसे परिचय होने से पहले आपको उनके प्रति प्रेम था? क्या आपकी जो फीलिंग्स है, आपको जब भाव है अपने मित्र के प्रति, सदा के लिए ऐसा था? नहीं, सर्वप्रथम आप उनको मिले, फिर एक दूसरे को पहचानने लगे, फिर एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगी। क्या यह मित्रता पहले ही मिलन में हो गई? नहीं, कुछ समय लगता है एक दूसरे को जानने के लिए, और फिर आकर्षण बढ़ता है, और उस आकर्षण के द्वारा फिर यह मित्रता हो जाती है। और जब यह मित्रता हो जाती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कुछ दिनों ना बात करने से कि आपके जीवन में कुछ छूट गया है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक संबंध बन जाता है तब उस व्यक्ति के साथ हम अपना समय बिताना चाहेंगे, उनके साथ रहने की इच्छा को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम है उस व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा, उस व्यक्ति के निकट हो जाने की इच्छा। इसी प्रकार से हम एक संबंध को बढ़ा सकते हैं। जितने कृष्ण भक्त हो चुके हैं, क्या अपने जीवन भर उनको इतना प्रेम कृष्ण के प्रति था, या कुछ समय के बाद यह प्रेम उदय हुआ? अधिकतर लोगों के कृष्ण प्रेम की वृद्धि कृष्ण की जानकारी होने के बाद होती है, किसी को सुनने से अथवा ग्रंथों को पढ़ने से। ये दो उपाय है कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का। हमें कृष्ण के गुणों को निहारने का अवसर मिल जाता है। जितना ही आप कृष्ण के विषय में ग्रंथ पढ़ेंगे उतना ही आपके कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ने से भक्त और भगवान दोनों के चरित्र जानने को मिलता है। इस विषय को दर्शाने के लिए चलिए हम एक उदाहरण पर विचार करें। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के चरित्र का वर्णन है। हम में से कितने लोग दुर्योधन जैसा होना चाहेंगे और कितने लोग अर्जुन जैसा होना चाहेंगे? अधिक लोग कहेंगे कि वे अर्जुन जैसा होना चाहते हैं, दुर्योधन जैसा नहीं। क्यों? इसका कारण है दुर्योधन बुरा था और अर्जुन अच्छा था। कृष्ण पांडव तथा द्रौपदी जैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कोई एक फेरी टेल नहीं है, कोई बनावटी कथा नहीं है, यह इतिहास है, हिस्ट्री है, इन महान व्यक्तियों का सत्य है।
बहुत लंबे समय के पहले की बात है। यदि हम 5000 वर्ष पहले आते तो हम पांडवों को देख पाते, परंतु अभी के समय पर हम उनके कार्यों के विषय में पढ़ सकते हैं। अब तो केवल पढ़ने से जो चाहे वो कृष्ण के साथ अपना संबंध और बढ़ा सकते हैं, परंतु आरंभ से ही हमें मित्र संबंध में कूद नहीं जाना चाहिए, हमें सेवा से शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम हम कृष्ण के सेवक बनना चाहते हैं। जैसे आप सामान्य रूप से देखें तो हम तुरंत प्रधानमंत्री को अपना मित्र नहीं बना सकते हैं, हम उनकी सेवा में लग सकते हैं। और सेवा करते करते यदि वो कहता है कि वो हमारा मित्र बनना चाहते हैं, तब हम उनके मित्र हो सकते हैं। और उसी प्रकार यदि कृष्णा चाहते हैं कि हम उनके मित्र बने, तभी यह संभव है। फिर भी कृष्णा स्वयं कहते हैं कि वो सभी प्राणियों के प्रिय मित्र है, सुहृद है। वे वैसे भयानक व्यक्ति नहीं है जिससे सब डरते हैं। फिर भी यदि कोई कृष्ण को अपना शत्रु माने तो कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं उनके साथ जिससे कि उनका विचार बदल जाए, क्योंकि वास्तव में भगवान सभी प्राणियों के प्रिय मित्र है। वे ही परम प्रेम के विषय है और सभी प्रेम रसों का भंडार है। अब कृष्ण को सचमुच में परखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए प्रेम पूर्वक भक्ति आवश्यक है। भक्त्या माम अभिजानाति यवान यश्चाज्मि तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है सत्य या सही रूप से जानना या सचमुच में जानना। यदि किसी को सचमुच में कृष्ण को समझना है तो भक्त्या माम अभिजानाति, वे अपने विषय में जो सत्य है वो उन्हीं को प्रकाशित करते हैं जो उनकी भक्ति में लगे हैं, और दूसरे लोग जो बिना भक्ति के कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं वे केवल कल्पना ही करते रह जाते हैं। भगवान का स्थान हमारे मन और बुद्धि से भी परे दिव्य स्थिति में है। इसी कारण अपने मन और बुद्धि के बल पर कृष्ण को समझने का प्रयास उस प्रकार है जैसे परमाणु को या एटॉमिक पार्टिकल को कोई अपनी इन आंखों से देखने का प्रयास करे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। यहां भी तत्वतः शब्द का उपयोग किया गया है। तो वास्तव में कृष्ण यहां कहते हैं कि यदि कोई समझे जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनके दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को सचमुच में समझ लेता है, तब त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, तब इस देह को त्याग करने के बाद उसे दूसरा देह नहीं मिलता है, परंतु वो कृष्ण के पास चला जाता है। तो कृष्ण के पास जाने के लिए हमें उनके जन्म और उनके कार्यों को समझना होगा, सचमुच में समझना होगा, अपनी कल्पना से नहीं। और उनके जन्म और कार्यों को समझने के लिए हमें भक्त होना होता है, उनके प्रति समर्पित होना होता है। कृष्ण कहते हैं कि बिना भक्ति के वे सही समझ नहीं देते हैं। तो ये समर्पण या भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ये समर्पण और भक्ति उनसे प्राप्त कर सकते हैं जिनमें पहले से ही समर्पण और भक्ति है। उन्हीं का आदेश पालन करने से और उनका संग करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण के जन्म के विषय में इसी कारण दो प्रकार की समझ है। एक है आम समझ कि उन्होंने कैसे जन्म लिया, और जो दूसरी समझ है वो आम जनता को पता नहीं है। इसे आगे समझाने के लिए हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम या भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 31 अध्याय के प्रथम श्लोक पर। गोप्य ऊचु जयति तेधिकम जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। इस श्लोक में ब्रजधाम या वृंदावन की गोपियां कहती है, हे प्रिय, ब्रजभूमि में आपके जन्म ने इसी ब्रजभूमि को अत्यधिक महिमा मंडित कर दिया है,
और इसलिए इंदिरा अर्थात लक्ष्मी भाग्य की देवी यहां सदैव निवास करती है। केवल आपके ही लिए हम आपकी समर्पित दासियां अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। हम हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, इसलिए कृपया हमें अपना दर्शन दीजिए। अब जो लोग संस्कृत श्लोकों के उच्चारण की कला से परिचित है वे इस श्लोक में और वास्तव में दसवें स्कंद के इस पूरे 31वें अध्याय में विशेष रूप से श्रेष्ठ संस्कृत कविता की सराहना कर पाएंगे। विशेष रूप से इन श्लोकों का छंद या पोएटिक मीटा अत्यंत सुंदर है। इसके अलावा अधिकांश पंक्तियों या लाइन में पहला और सातवां वर्ण या सिलेबल एक ही व्यंजन या कॉन्सनंट से शुरू होता है और चारों पंक्तियों या लाइन के दूसरे वर्ण या सिलेबल भी एक समान व्यंजन या कॉन्सनंट से शुरू होते हैं। अब ये अध्याय जिसका पहला श्लोक हमने अभी अभी पाठ किया है गोपियों के विरह गीत के रूप में जाना जाता है। गोपियां वृंदावन के वन में कृष्ण को ढूंढ रही थी। कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, फिर अचानक कृष्ण अदृश्य हो गए, गायब हो गए, तो एक ही पल में सभी गोपियों ने पाया कि कृष्ण वहां नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण की खोज शुरू कर दी। कृष्ण को इस प्रकार खोजते खोजते वे यमुना नदी के तट पर पहुंच गई और वहां उस पूर्णिमा की रात में वे कृष्ण से बिछड़ने के कारण अपने दिल की पीड़ा व्यक्त करने लगी। और इस अध्याय का पहला श्लोक वही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो गोपियां कहती है जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। अब व्रज का अर्थ है वृंदावन और जन्म का अर्थ है आपके जन्म के कारण। वृंदावन में आपके जन्म के कारण ये वृंदावन या व्रज महिमा मंडित हो गई है। ते अधिकम का अर्थ है अत्यंत महिमा मंडित और आपकी यहां उपस्थिति के कारण इंदिरा अर्थात लक्ष्मी देवी यहां सदा निवास करती है। शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। शाश्वत का अर्थ है निरंतर सदा के लिए लक्ष्मी देवी यहां निवास करती है। तो यदि कृष्णा वहां है, यदि नारायण वहां है, तो लक्ष्मी देवी भी सदा वहीं रहेगी जहां भगवान है। अच्छा भाग्य आपो आप ही विराजमान हो जाती है। आमतौर पर तो लक्ष्मी देवी जिसे भाग्य की देवी कहते हैं उसको चंचला कहा जाता है। चंचल का अर्थ है जो किसी एक स्थान पर रुकती नहीं है, क्योंकि वास्तव में लक्ष्मी देवी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकती, परंतु जब लक्ष्मी देवी नारायण के साथ होती है तब लक्ष्मी देवी अचंचल हो जाती है, उसका चंचल स्वभाव लुप्त हो जाता है। तो जो लक्ष्मी देवी की आराधना या पूजन नारायण के बिना करते हैं उनके लिए लक्ष्मी देवी बहुत देर तक टिकती नहीं है। कुछ समय तक वहां रह सकती है परंतु बहुत ही शीघ्र फिर वो चली जाती है। वो चंचला है, परंतु यदि नारायण उपस्थित होते हैं, यदि कृष्ण उपस्थित है, तब वो अचंचल हो जाती है। तो नारायण कौन है? नारायण ही कृष्ण है। और क्योंकि कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं लक्ष्मी देवी सदा वहीं पर रहती है, और जब लक्ष्मी देवी वहां होती है तो सुखद भाग्य भी वहीं पर होगा, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी ही श्री देवी है। श्री का अर्थ है ऑपुलेंस या गुड फॉर्च्यून, ऐश्वर्य और अच्छा भाग्य। तो गोपियां इस प्रकार से विलाप कर रही थी। अब ये विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में ये गोपियां लक्ष्मियां हैं। श्रिय कांत कांत परम पुरुष। तो कृष्ण परम पुरुष है और उनकी प्रिय गोपियां लक्ष्मियां है। वृंदावन में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। सहस्र शत का अर्थ है हजार सौ,
तो लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, वो क्या कर रही है? वे बड़े ही सम्मान सहित कृष्ण की सेवा कर रही है। यही वृंदावन की स्थिति है कि लाखों की संख्या में निरंतर वृंदावन में कृष्ण की सेवा में लक्ष्मियां लगी हुई है। ये गोपियां ही लक्ष्मियां हैं। तो ये सब बड़ा ही गहरा विचार है। कृष्ण स्वयं भगवान है और उनकी लादिनी शक्ति, उनको आनंद देने वाली शक्ति श्रीमती राधारानी है, और राधारानी के विस्तार ये सब गोपियां हैं। राधारानी के अनेकों विस्तार ये सब गोपियां हैं। ये सब विस्तार इसलिए लक्ष्मियां हैं। द्वारका में श्रीमती राधारानी की पहली विस्तार रुक्मिणी और सत्यभामा है, इसी कारण रुक्मिणी को महालक्ष्मी कहते हैं। और इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि वृंदावन क्या है, वृंदावन के वासियां कौन है, और जो वृंदावन में कृष्ण है वो कौन है। इस समझ को स्पष्ट रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है। इसी कारण ऐसा कहा गया है कि यदि हमें कृष्ण को जानना है तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से जानना होगा। केवल उनके ही शिक्षण के द्वारा हम कृष्ण को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महान व्याख्याकारों में से एक है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उन्होंने समझाया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये दर्शाती है कि वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र कृष्ण ही पूजनीय भगवान है, आराध्य भगवान व्रजेश तनय, और उनका धाम वृंदावन है, तद्धाम वृंदावन। जिस प्रकार व्रजवधुओं या व्रज गोपियों ने उनकी उपासना की, वही उपासना का सर्वोच्च रूप है। रम्य काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो परम भगवान कौन है? आराध्य भगवान, वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण की स्थिति तीन अलग अलग स्थानों पर है। द्वारका के कृष्ण पूर्ण है, मथुरा के कृष्ण उससे अधिक पूर्ण है, जिसे पूर्णतर कहते हैं, और वृंदावन के कृष्ण सबसे अधिक पूर्ण या पूर्णतम है। इसलिए वे सर्वोच्च पूर्णतम है, अर्थात वृंदावन के कृष्ण सबसे पूर्ण है, भगवान का संपूर्ण सबसे अधिक पूर्ण रूप है। हां, कृष्ण भगवान है और उनकी लीलाएं हैं द्वारका, मथुरा और वृंदावन में, परंतु उनकी लीलाओं के अनुसार कृष्ण की भिन्न समझ है। आराध्य भगवान व्रजेश तनया, तो ये व्रजेश तनया कृष्ण वृंदावन का कृष्ण, उनके कार्य यहां कहे गए हैं, जिसे श्रीमद् भागवतम में भी छुपा कर रखा हुआ है। किस प्रकार से छुपा रखा है? भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम में, दसवें स्कंद के शुरुआत में, और अन्य ग्रंथों में भी, जैसे हरिवंश, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, जहां विवरण है कि कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। सामान्य समझ ये है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। यह आम समझ है, परंतु इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया, जन्मना व्रज। वे कह रही है कि कृष्ण ने व्रज में जन्म लिया। अब तो ये एक स्पष्ट विरोधाभास है, विपरीत बात कही गई है कि कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, और यहां व्रज गोपियां कहती है कि कृष्ण ने व्रज में जन्म लिया। वृंदावन के गोस्वामी जनों ने शास्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने व्रज के वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा माता के पुत्र के रूप में भी अवतार लिया था। और जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल में नंद महाराज के घर वृंदावन लाए,
उस समय प्रसव के थकान के कारण यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी और बाकी सभी लोग भी गहरी नींद में थे। और फिर जब वसुदेव ने कृष्ण को रखा तब वासुदेव कृष्ण और व्रजेंद्र नंदन कृष्ण दोनों एक होकर विलीन हो गए, अर्थात कृष्ण के ये दो विभिन्न रूप एक रूप बन गए। ये वृंदावन के गोस्वामियों का वर्णन है, विशेष रूप से मुख्य रूप से श्रील जीव गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। तो ये वे अलग अलग दृष्टिकोण है जो श्रीमद् भागवत के बाद के भाग में कृष्ण के प्रकट होने के विषय में है। परंतु मूल कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज और माता यशोदा के पुत्र है, और ये कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ये कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, वे वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, इस विषय में क्या? अब इस संबंध में हम एक घटना पर विचार कर सकते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, जब अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तब अक्रूर ने मथुरा और वृंदावन की सीमा पर यमुना के तट पर रथ रोक दिया था। उस समय कृष्ण रथ से उतर गए और उन्होंने यमुना में स्नान किया, और उसी समय अक्रूर ने जल में कृष्ण को उनके चार भुजाओं वाले रूप में देखा, चतुर्भुज में देखा। इसलिए वो चार भुजाओं वाले कृष्ण वासुदेव कृष्ण है। जब कृष्ण स्नान करने गए, फिर स्नान करने के बाद वासुदेव कृष्ण ही रथ पर सवार होकर मथुरा गए, और व्रजेंद्र नंदन कृष्ण वापस वृंदावन चले गए। तो ये व्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। अब फिर एक और प्रश्न उठता है कि कृष्ण 100 वर्षों तक, इतने लंबे समय तक वृंदावन से अनुपस्थित थे, उसका क्या? नहीं, कृष्ण अनुपस्थित नहीं थे, कृष्ण पूरी तरह वहां उपस्थित थे और कृष्ण गोपियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ व्यवहार करते थे। परंतु जब कृष्ण उनके पास आते थे तो वे सोचते थे कि वे स्वप्न देख रहे हैं, वे कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, परंतु वे सोचते थे कि वे स्वप्न देख रहे हैं, और इस तरह वे पूरी तरह कृष्ण के विचारों में लीन थे। और इस प्रकार के विचार को विप्रलंभ के नाम से जाना जाता है। कृष्ण से विरह की इस भावना को विप्रलंभ के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के साथ दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक है विप्रलंभ अर्थात विरह में, और दूसरे को संभोग कहा जाता है। तो संभोग का अर्थ है मिलन और विप्रलंभ का अर्थ है विरह। तो कृष्ण से ये विरह भक्ति का सर्वोच्च रूप है, ये विरह कृष्ण का सर्वोच्च ध्यान है। जब गोपियां कृष्ण के साथ हुआ करती थी तो वे हमेशा चिंता में रहती थी, क्या कृष्ण अब चले जाएंगे, अगर कृष्ण चले गए तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह जब वे कृष्ण के साथ होती थी तब वे हमेशा चिंता में रहती थी, परंतु जब वे कृष्ण से विरह में होती थी तब उनका ध्यान, उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण पर एकाग्र था और बिल्कुल चिंताग्रस्त नहीं होते थे। तो ये कृष्ण की व्रज लीला या व्रज की लीलाओं के वे गहरे पहलू है जो अन्यथा प्रकट नहीं किए गए हैं। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ही संभव है। जबकि कृष्ण एक भक्त के रूप में आए, बिना श्री चैतन्य महाप्रभु के क्या कोई संभवता इस समझ में प्रवेश कर सकता है? यह समझ अन्यथा छिपा कर रखी जाती है, और ये हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण
हमारा इससे परिचय हो रहा है। हमारे आराध्य भगवान नंद महाराज और माता यशोदा के पुत्र है। अन्यथा यह प्रश्न उठता है, कृष्ण को बार बार यशोदा नंदन या नंद नंदन कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? केवल देवकी नंदन या वासुदेव कृष्ण क्यों नहीं? और ये क्यों कहा गया है कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते? यदि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते तो वे मथुरा में जन्म लेकर वृंदावन वापस कैसे आ सकते हैं? वह वासुदेव कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण या व्रजेंद्र नंदन कृष्ण का एक विस्तार है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उनका स्वयं रूप द्विज भुज दो हाथ वाले श्याम सुंदर दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप है। द्वारका और मथुरा में उनका पहला विस्तार वासुदेव कृष्ण है। अब इस बात को लेकर विचारों के कई मत है कि क्या ईश्वर एक रूप वाला व्यक्ति है या वो निराकार अथवा निर्व्यक्तिक है, क्योंकि हमें इस संसार में रूप और व्यक्तित्व का अनुभव होता है और वे रूप तथा गुण सीमित है। इसलिए लोग अपने तर्क से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई ईश्वर है जो इस सृष्टि से इस जगत से परे हैं तो उसे निराकार और गुण रहित होना ही चाहिए। यदि वो हमारे जैसा नहीं है तो उसे हमसे विपरीत होना ही चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि ऐसे निष्कर्ष हमेशा सही ही हो। ऐसे निष्कर्ष का एक उदाहरण यह शरीर है, क्योंकि हमारा शरीर बीमार और बूढ़ा हो जाता है और हमें परेशानी देता है, और क्योंकि ईश्वर को कोई परेशानी नहीं है इसलिए उसका शरीर नहीं हो सकता। इस तरह का निष्कर्ष यह मान लेता है कि अस्तित्व में ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसे कोई परेशानी ना हो। परंतु वैदिक शास्त्र वास्तव में ऐसे दिव्य स्वरूप की बात करते हैं जिसमें ऐसी कोई परेशानियां नहीं होती है। हम हमेशा अपनी सांसारिक तर्क पद्धति को दिव्य विषयों पर लागू नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन के ऐसे अनेक पहलू है जो इस संसार के सांसारिक तर्क का अनुसरण नहीं करते। तो ये हमें कृष्ण के एक और पहलू की चर्चा तक ले आता है। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ मधुर है। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत मधुर ढंग से वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ मधुर या मधुरा है। चाहे उनका चलना हो या बोलना हो, उनकी बांसुरी बजाना हो, उनका हरण करना हो, उनका मुक्त करना हो, उनके गोप और गोपियां हो, उनकी गायें हो, उनका सौंदर्य हो, उनका ललाट हो, उनकी आंखें हो, सब कुछ मधुर या मीठा है। इसलिए मधुरादि पतेर अखिलम मधुरम, वे मधुरता के भंडार है। श्री कृष्ण असीमित भंडार है। वेद श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में वर्णित करते हैं, जिन्हें परम सत्य के नाम से जाना जाता है। परम सत्य शब्द के कई अर्थ है और भगवान शब्द को पूरे संसार में अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। आमतौर पर जब लोग भगवान या ईश्वर शब्द सुनते हैं तो उनके मन में यह चित्र उभरता है कि भगवान वो है जो सर्वशक्तिमान है, इस संसार के सृष्टि करता है, दुष्कर्मियों को दंड देने वाले हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब ठीक है, ये सभी ईश्वर की गतिविधियां हैं और अपने विस्तारों के माध्यम से वे निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियां करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। परंतु ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण कार्य या गतिविधियां नहीं है, न ही ये उनकी वास्तविक समझ है।
भगवान को इस कारण नहीं समझा जाता कि उन्होंने इस संसार की रचना की है, या उनके पास कितनी शक्ति है, या उनके पास कितनी ऐश्वर्य संपदा है। भगवान के बारे में परम सत्य ये है कि वे असीम माधुर्य के भंडार है। उनके प्रत्येक संबंध में उनके माधुर्य की कोई सीमा नहीं है। ये माधुर्य क्यों? क्योंकि उनके गुण ही ऐसे हैं, और किसी के गुणों के अनुसार व्यक्ति को मीठा या कड़वा माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कुछ खाते हैं तो उसके गुण के अनुसार हमें स्वाद मिलता है। कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, कुछ कड़वा होता है। उसी तरह किसी व्यक्ति का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर स्वभाव मीठा या थोड़ा कड़वा या थोड़ा खट्टा होता है। तो कुछ हद तक हम किसी व्यक्ति को उसके अंदर उपस्थित गुणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब जहां तक कि श्री कृष्ण के गुणों का संबंध है, वे ऐसे हैं कि आप उन्हें जिस भी तरह से देखें, वे केवल मधुर ही है। बिल्कुल एक बहुत ही मीठे आम या फल की तरह, जिसका ना तो छिलका हो और ना ही बीज, बल्कि जो बस एक आम ही हो। आप जिस भी दिशा से उसका स्वाद ले, आम बहुत स्वादिष्ट होगा। उसी तरह श्री कृष्ण है। आरंभ से अंत तक कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि आप जिस भी दृष्टिकोण से उनके गुणों को देखने या समझने या वर्णन करने का प्रयास करें, वे सभी बस मधुर है, और इसलिए उन्हें सर्व आकर्षक कहा जाता है। वास्तव में कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्व आकर्षक है, अर्थात प्रत्येक तरह से आकर्षक। अपने असीमित गुणों के माध्यम से वे सभी को आकर्षित करते हैं। यहां तक कि जो आत्मराम है, वे आत्मसंतुष्ट ऋषि जो इस संसार से किसी भी वस्तु का आनंद लेने में कभी रुचि नहीं रखते, वे भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिव्य गुण इतने प्रभावशाली है। अब कई दार्शनिक है, कुछ को हम निर्विशेषवादी, कुछ को मायावादी या अद्वैतवादी के रूप में जानते हैं। वे सोचते हैं कि परम सत्य के कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये स्वीकार है कि भगवान की निराकार ज्योति का अस्तित्व है, परंतु ये उनकी मूल स्थिति नहीं है। अपने मूल अस्तित्व में भगवान एक व्यक्ति है, और क्योंकि वो मूलतः एक व्यक्ति है, इसलिए उनका एक रूप है और उनमें गुण भी है। जब भी शास्त्रों में कहा जाता है कि श्री कृष्ण निर्गुण है, इसका अर्थ है कि उनमें कोई भौतिक गुण या विशेषताएं नहीं है। इस संसार में भौतिक प्रकृति के सत्व, रज और तम के गुण कृष्ण पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जब कृष्ण को निर्विशेष कहा जाता है, तो इसका अर्थ है कि उनमें इस संसारिक जगत के कोई गुण नहीं है, परंतु वे दिव्य गुणों के असीमित सागर है। और जब उन्हें निराकार कहा जाता है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि उनका कोई रूप नहीं है। उनका रूप शाश्वतता, आनंद और ज्ञान से बना है, सच्चिद आनंद से बना है। उनका शरीर या रूप इस भौतिक संसार के स्थूल भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है। तो सभी परिस्थिति या स्थिति में भगवान का स्वरूप दिव्य, अद्वितीय, शाश्वत, आनंदमय और पूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सभी शुभ दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, और इन गुणों के माध्यम से वे अपनी मधुरता, अपनी माधुर्य का प्रदर्शन करते हैं। अब जो भी गुण हम यहां इस संसार में किसी व्यक्ति में देख पाते हैं,
वे भगवान श्री कृष्ण में भी है, इसलिए हम उन्हें अपने भीतर भी देख पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के जल की एक बूंद में बहुत थोड़ी मात्रा में पूरे समुद्र के समान ही गुण होते हैं, अन्यथा उस बूंद में वो गुण आया कैसे। यदि हम समुद्र के गुण को समझना चाहते हैं तो हमें उस बूंद का परीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समुद्र क्या है। तो आचार्यों या गुरुओं ने शास्त्र के अनुसार कहा है कि कृष्ण के अनंत गुण है, इतने सारे गुण है कि अनंत शेष जिनके अनगिनत मुख है, अनादि काल से कृष्ण के गुणों का वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी उनके वर्णन का अंत नहीं कर पाए हैं, भले ही वे अपने अनगिनत मुखों से उनका वर्णन कर रहे हैं। फिर भी आचार्यों में से एक श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आचार्यों ने 64 गुणों को चुना है जिन्हें वे सर्वोपरि मानते हैं, और ये 64 गुण 64 गुण श्री कृष्ण में अपनी पूर्णता में असीमित मात्रा में विद्यमान है। भगवान चैतन्य ने श्री चैतन्य चरितामृत में महान आचार्य सनातन गोस्वामी को कृष्ण के इन गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण में ये 50 गुण है, और उनका वर्णन करने के बाद वे कहते हैं जीवे श्वेते वसंतोपी बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे, कि ये 50 गुण जीवों में भी है, अर्थात आध्यात्मिक अध्यात्माओं में, परंतु बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। इसलिए इस संसार में हम जिसे भी देखते हैं, जो धनवान सुंदर बुद्धिमान प्रभावशाली शक्तिशाली है, या महान कविता लिखता है, या अच्छा दर्शन लिखता है, या अच्छा गाता है, या अच्छा बजाता है, या अच्छी तरह बात कर सकता है, लोगों में इस संसार में जो भी ये गुण हम देखते हैं, वे बिंदु बिंदु त्वया क्वचित, वास्तव में वे जीवों के भीतर भगवान के गुण है, परंतु बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, छोटी मात्रा में। और भगवान के बारे में, वे गुण भगवान में अपनी पूर्णता में विद्यमान है। तो यदि हम जीवों और उनके गुणों को देखकर इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, तो कृष्ण जिनमें ये गुण असीमित मात्रा में है, उनसे हमें कितना प्रभावित होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोग दूसरों से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। जो थोड़े प्रभावशाली है, या अच्छी तरह गा सकते हैं, या जिनके पास बहुत सारा धन है, परंतु ये सब बहुत ही तुच्छ है। यदि उन्हें यह पता चल जाए कि किस व्यक्ति के भीतर ये गुण समुद्र की तरह असीमित रूप में विद्यमान है, तो क्या उसके बाद वे इस संसार के लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं? नहीं, वे भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण में केवल ये 50 गुण ही नहीं है, उनमें 5 और गुण भी है। सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञो नित्य नूतनः सचिदानंद सांद्रांगः सर्वसिद्धि निषेवितः। ये गुण इस प्रकार है। पहला, भगवान सदैव अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। दूसरा, वे सर्वज्ञ है। तीसरा, वे सदैव नवीन और युवा रहते हैं, अर्थात नौजवान रहते हैं। चौथा, वे अनंतता ज्ञान और आनंद के सघन स्वरूप है। और पांचवा, वे सभी योग सिद्धियों के स्वामी है। अब ये 5 गुण जीवों में नहीं पाए जाते। फिर अथोच्यन्ते गुणः पंच ये लक्ष्मीशादि वर्तिनः अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम
हतारी गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षति अमी कृष्णे किलाद्भुत। वैकुंठ लोकों में लक्ष्मी के स्वामी भगवान नारायण में 5 अन्य गुण भी विद्यमान है। ये गुण कृष्ण में भी उपस्थित है, परंतु ये देवताओं या भगवान शिव जैसे अर्ध देवताओं अथवा अन्य जीवों में उपस्थित नहीं है। ये गुण इस प्रकार है। 1. भगवान के पास अकल्पनीय सर्वोच्च शक्ति है। 2. वे अपने शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। 3. वे सभी अवतारों के मूल स्रोत है। 4. वे जिन शत्रुओं का वध करते हैं उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। और 5. उनमें उन महान व्यक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता है जो स्वयं में संतुष्ट है। यद्यपि ये गुण वैकुंठ ग्रहों या वैकुंठ लोकों या आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देवता नारायण में विद्यमान है, परंतु कृष्ण में ये और भी अधिक अद्भुत रूप से विद्यमान है। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजित असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर। के इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 और दिव्य गुण है जो नारायण के व्यक्तित्व में भी प्रकट नहीं होते। ये है, 1. कृष्ण ऐसी लीलाओं से भरे महासागर के समान है जिनकी तरंगे तीनों लोकों में सभी के भीतर विस्मय उत्पन्न करती है। 2. अपने माधुर्य प्रेम की लीलाओं में वे सदैव अपने उन प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं जिनका उनके प्रति प्रेम अतुलनीय है। 3. वे अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से तीनों लोकों के सभी प्राणियों के मन को आकर्षित करते हैं। और 4. उनका व्यक्तिगत सौंदर्य और ऐश्वर्य अतुलनीय है। उनके समान कोई नहीं है और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। इस प्रकार भगवान का व्यक्तित्व तीनों लोकों के सभी चर और अचर जीवों को विस्मित कर देता है। वे इतने सुंदर है कि उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो जब हम कृष्ण की अतुलनीय सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तब हम इस भौतिक संसार की झूठी सुंदरता को भूल जाएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, भगवान कृष्ण के पवित्र प्राकट्य दिवस पर, हरे कृष्ण आंदोलन, जिसे इस्कॉन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी का शनिवार 5 सितंबर को आयोजित भव्य समारोह में हार्दिक स्वागत करता है, जो कि क्रोएशियन कम्युनिटी सेंटर 164 डन रोड रॉकली में शाम को 4 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक आयोजित किया जाएगा। वहां मनमोहक आध्यात्मिक कीर्तन, शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बच्चों की गतिविधियां, भगवान का औपचारिक स्नान या अभिषेक, आरती समारोह तथा सभी के लिए प्रसाद रूपी भोजन भी रहेगा। आप सभी को सादर आमंत्रण है। याद रहे, जन्माष्टमी मनाई जाएगी क्रोएशियन कम्युनिटी सेंटर 164 डन रोड रॉकली में शनिवार 5 सितंबर को शाम को 4 बजे से मध्य रात्रि तक। आप सभी को सादर निमंत्रण है। ये जन्माष्टमी आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी और कैसी है आपकी आज की मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज है 2nd of September, मतलब कि सितंबर नाउ ऑफिशियली आ ही चुका है, नया मंथ, नई एनर्जी और नए प्लान्स। और दोस्तों, अगर आप सुबह आंख खुलते ही सोच रहे हो ना कि रुक जाओ जानी, थोड़ा सा और सोने दीजिए, तो सॉरी दोस्तों, ब्रिस्बेन में प्रोग्राम जानी का सफर आ चुका है आपकी दोस्त होस्ट आरजी जानी जैन के साथ, जो आपको बेड से निकालने आ ही गया है। सो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। सो दोस्तों, ये था छोटा सा मजाक मॉर्निंग वाला, ताकि आप हंस सके। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी मॉर्निंग, जिसमें म्यूजिक भी है, न्यूज भी है, गॉसिप भी है और साथ ही साथ थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी भी है। वैसे तो ज्यादा ही होती है, लेकिन हम पॉजिटिव एनर्जी हर चीज में ही लेकर आते हैं। सो दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, शुरू करते हैं ये कार्यक्रम ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन इस गीत के साथ।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में सु मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ना कल जैसा नहीं है, हो सकता है कल से भी बेहतर हो, फ्रेश डे हो, फ्रेश एनर्जी हो और फ्रेश पॉसिबिलिटीज के साथ पॉजिटिव वाइब्स भी हो। तो सुनिए दोस्तों, अगर सुबह सुबह ट्रैफिक ने मूड खराब कर दिया है ना, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ट्रैफिक अपनी जगह है और आपकी गुड वाइब्स अपनी जगह। आज कोई छोटी सी खुशी ना आपका इंतजार कर रही होगी दोस्तों, शायद कोई अच्छा सा मैसेज, चाहे किसी का प्यारा सा गुड मॉर्निंग शेयर, फिर फेवरेट सॉन्ग या फिर वो पहली सिप ऑफ कॉफी। तो स्माइल कीजिए ब्रिस्बेन, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि ब्रिस्वानी आ चुका है अपना प्यारा सा मॉर्निंग प्रोग्राम यानी कि चांदने का सफर लेकर, जो आपकी मॉर्निंग को ब्राइटर के साथ साथ हैप्पियर भी बनाने वाला है, ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे आज की अपडेट्स, बहुत सारी न्यूज बातें, बस कहीं मत जाइएगा, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और पॉजिटिव गाने भी सुनिए। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक यू रेडियो ब्रिस्बानी में। सो दोस्तों आइए, अब वक्त हो चला है ब्रिस्बेन एंड ऑस्ट्रेलिया के न्यूज अपडेट्स लेकर आपके बीच हाजिर हो चुकी हूँ। ब्रिस्बेन में रिवर फायर 2026 को लेकर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटीज सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटरडे को फेरी वर्कर्स की 24 आवर स्ट्राइक प्लान्ड है, जो कि रिवर फायर के दिन हाई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि रिवर फायर जो है वो ब्रिस्बेन फेस्टिवल की शुरुआत भी करता है और इवेंट में ह्यूज क्राउड्स एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप रिवर फायर अटेंड करने का प्लान कर रहे हैं या बना रहे हैं तो ट्रेवल से पहले अपनी फेरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपडेट जरूर चेक कर लेना दोस्तों। प्लान करो बट स्मार्टली। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रेसवानी में। सो दोस्तों आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वेदर टॉक। ऑस्ट्रेलिया ने एक अनयूजुअली वार्म विंटर एक्सपीरियंस किया है और वेदर मॉडलिंग स्प्रिंग के दौरान भी अबव एवरेज वार्म की तरफ पॉइंट कर रही है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने ना विंटर को कहा थैंक यू नेक्स्ट, स्प्रिंग वाइब्स ऑफिशियली ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद जानेंगे एंटरटेनमेंट गॉसिप क्या है, क्या नई बात है भाई। सो आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रेसवानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्मानी में। सो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है और टाइम हो चुका है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की दुनिया में झांकने का भाई, क्योंकि ब्रिस्बेन की मॉर्निंग बिना एंटरटेनमेंट गॉसिप के थोड़ी सी भाई इनकम्प्लीट सी लगी है। ऑस्ट्रेलिया की पॉप आइकन काइली माइनोक एक बार फिर से हेडलाइंस में है। दोस्तों, काइली इस साल जो है 26 सितंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में AFL ग्रैंड फाइनल के प्री गेम एंटरटेनमेंट की हेडलाइन परफॉर्मर होगी। आपको बता दें कि ये उनका AFL ग्रैंड फाइनल स्टेज पर पहला परफॉर्मेंस होगा और सितंबर इशू ऑफ वॉक ऑस्ट्रेलिया के कवर पर भी काइली जो है वो नजर आ रही है। मतलब कि ऑसी सुपरस्टार का सितंबर फुल ऑन काइली मंथ लग रहा है। दोस्तों, 40 साल के म्यूजिक करियर के बाद भी ना काइली की जो एनर्जी है वो स्टिल अनस्टॉपेबल है। सो दोस्तों, हम अपने म्यूजिक को स्टॉप नहीं करेंगे। आप सभी बस जुड़े रहिए मेरे साथ ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन, जहां पे सुनेंगे बहुत प्यारे प्यारे गीत।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में सो मेरे म्यूजिक लवर्स गेट रेडी। ब्रिस्बेन में बिग साउंड की वजह से लाइव म्यूजिक सीन फुल एक्टिव है, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस के थ्रू एमर्जिंग ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट स्पॉट लाइट में आ रहे हैं। आपको बता दें 4 सितंबर यानी कि 4th of September से ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 ऑफिशियली किक ऑफ हो रहा है, जो 26 सितंबर तक चलेगा, म्यूजिक, थिएटर, डांस, सर्कस और बहुत सारे परफॉर्मेंस के साथ। तो ब्रिस्बेन वालों, सितंबर बोरिंग होने वाला नहीं है। सिटी में म्यूजिक भी होगा, परफॉर्मेंसेस भी होंगे और ऑब्वियसली भाई रिवर फायर का धमाका तो है ही। सुनते रहिए आप सभी रेडियो ब्रिस्बेन।

दोस्तों ये बात उन सभी लोगों के लिए जो भाई घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इवेंट्स है या नाइट ड्यूटी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अटेंड नहीं कर सकते बाहर के इवेंट। तो भाई आप इंडोर यानी कि घर बैठे भी बहुत सारी चीजें इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम या फिर ऐसी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों अनटोल्ड रेगन ब्रेकिंग बैडली डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रेकर रेकल गन के ओलंपिक जर्नी और उसके अराउंड बनी कॉन्ट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करती है। तो मेरे दोस्तों पॉपकॉर्न को ना रेडी रखिए, सितंबर में एंटरटेनमेंट का शॉर्टेज तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे इवेंट बाहर का हो चाहे आप घर पे एंजॉय करने वाले हो। ये जो इवेंट्स हैं यानी कि बहुत सारी एंजॉयमेंट है वो आप घर पर बाहर सब जगह एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जानी आपके लिए बात ही ऐसी लेकर आती है, चीजें ऐसी लेकर आती है जो आपको बोर नहीं कर सकती। सो दोस्तों आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो प्रसवानी।

हाँ जी, तो दोस्तों और मेरे ब्रिस्बेन वासियों, आज की ब्यूटीफुल मॉर्निंग यही तक, लेकिन याद रखिए मॉर्निंग शो खत्म हुआ है। आज जहाँ भी जाए, जिसे मिले, स्माइल जरूर दीजिएगा। हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी आपकी एक छोटी सी स्माइल भी ना किसी और का पूरा दिन बहुत बहुत बहुत बेटर बना सकती है। और अगर आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो बस खुद से कहना मत भूलिएगा कि आई हैव गॉट दिस। जी हाँ, मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन। आप सभी सुन रहे हैं

रेडियो बिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर, और आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा जरूर लगा होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, सेफ ड्राइव कीजिए, और ब्रिस्बेन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग। कल फिर मिलेंगे एक नई मॉर्निंग, नई एनर्जी और नई स्टोरीज के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द बिस्वानी वाइब्स अलाइव। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इमरान खान को बुशरा बीवी से मिलने की मिली इजाजत, पाकिस्तान कोर्ट ने अकेले रखने पर लगाई रोक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार व उससे जुड़े मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अकेले रखने पर रोक लगा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदियाला जेल प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि वो जेल के नियमों के अनुसार इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के बीच मुलाकात की सुविधा दें। हाईकोर्ट का ये फैसला तब आया है जब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान को कथित तौर पर अकेले रखे जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। नेपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 583 विदेशी नागरिकों समेत हजारों लोग अभी भी लापता। नेपाल और चीन में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। नेपाल में बाढ़ से 987 लोगों की मौत हुई है, वहीं चीन में 16 लोगों की जान गई है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में लावारिस शवों की शिनाख्त के लिए आगे आया भारत, 9 चरणों वाली प्रक्रिया की दी जानकारी। तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना भी डरावनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लापता लोगों में 275 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग शामिल हैं। इनमें अधिकांश श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में ही इस आपदा का शिकार हो गए। नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय परिवारों को उनके प्रियजनों के शवों की पहचान करने में सहायता के लिए चरण दर चरण दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार मृतकों की तस्वीरें और विवरण जारी कर रही है जिन्हें वेबलिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं भारत की ओर और सुनते हैं भारतीय खबरें। पाकिस्तान ने SCO समिट की तस्वीर से PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति को हटाया। पाकिस्तान के PMO की ओर से शेयर की गई SCO नेताओं की ग्रुप फोटो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉप करके हटा दिया गया है। क्रॉप की गई फोटो में शहबाज शरीफ को बीच में दिखाया गया है। हालांकि PM मोदी की पोस्ट की गई फोटो में पूरा ग्रुप था जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे। बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई तस्वीर थी जिसमें 10 सदस्य देशों के नेता एक साथ पोस्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों की अपडेट्स के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुख के साथ इतला की जाती है कि दारा के अलहाज शमशेर अली और फातिमा अली के फर्जंद और सलमा बेग, शम्मा अली, साहिबा अली के अब्बा अयाज फरीद अली का इंतकाल कल शाम 6 बजे QE2 अस्पताल में हो गई। जनाजे को आज 1:30 बजे यानी 1:30 PM दारा मस्जिद से माउंट गरेबट कब्रिस्तान ले जाकर ठीक 2 बजे जनाजा की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद मैयत को दफनाया जाएगा। इस खबर के सुनने वालों से गुजारिश की जाती है कि मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करें। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा जअल कब्रहुम रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना वला तजअल कब्रहुम खुफ्रतम मिन हुफ्रिन नीरान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी, ये तो बहुत दुखद सूचना मिला सुबह सुबह आज
0: जी। हम अपने तरफ से और सभी सुनने वालों के तरफ से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हाजी साहब को और उनके बीवी बच्चों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहब बहुत मिलनसार हैं और रेडियो ब्रिजबानी में भी आकर बहुत दिनों तक हमारे साथ जनता की खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके बेटे को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाए, आमीन
1: आमीन। और ओह माय गुडनेस, अभी तो बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने जो सूचना लेकर आए हैं बहुत दुखद सूचना है, लेकिन चलो उम्मीद है कि बहुत से लोग सुने होंगे और जरूर आज 1:30 आपने कहा ना
0: जी, 1:30 जनाजे को दारा मस्जिद से ले जाया जाएगा।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी,
0: बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। बहुत अफसोस की बात है। I am just shocked.
2: Yeah.
1: अभी आई जस्ट स्पोक टू शमशेर भाई two weeks ago और रेडियो पर भी आया था बेचारा। बहुत what do we do, hey? चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मेजबानी पर। प्लीज अगर हो सके अपने यार दोस्त तक अगर आपने सुना है तो सूचना पहुंचा दे, क्योंकि समय कम है ना। और प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शमशेर भाई, व्हाट कैन आई से, आई एम सो सो सॉरी टू हियर ऑफ सच अ सैड न्यूज। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए।
2: या मी टू, आई एम जस्ट लॉस्ट फॉर वर्ड्स बिकॉज़ दिस इज लाइक हैपेंड बट टू ऑफन फॉर हिम एंड हिज फैमिली, यू नो। आई डोंट नो व्हाट टू से।
1: चलो दोस्तों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और सूचना हम फिर रिपीट करेंगे दोस्तों, तो चले आगे बढ़ते हैं। और व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, लेट्स हैव अ सॉन्ग एंड देन वी कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सो मच।

0: जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और यहाँ का नंबर है 04300031701, यानी मेरा नंबर, और यहाँ का नंबर है 3279-1701। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा मौसम का क्या हाल है। आज के लिए कहा गया मौसम साफ रहेगा, 13 and 27 रहेगा, बारिश नहीं होगी। कल के लिए सनी है, 15 and 31 नो रेन। फ्राइडे को भी मौसम साफ रहेगा, 17 and 33 बारिश नहीं होगी दोस्तों। सैटरडे को सनी है, 16 and 31 नो रेन। संडे को भी मोस्टली सनी, 18 and 34 नो रेन। मंडे को मोस्टली सनी, 17 and 27 नो रेन। ट्यूसडे को पॉसिबल शावर, 17 and 26 वन मिलीमीटर ऑफ रेन। ओके, और देखते हैं रास्ते का क्या हाल है दोस्तों। रास्ते पर अभी तो वैसे कुछ खास नया नहीं आया है, एवरीथिंग इज ओके। एनीवे, सॉरी आई कुडंट डू द फिजियन न्यूज़ एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूज़, आई प्रोबब्ली डू इट लेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, वार वी गेट बिट कंपोस्ट हियर।
1: ओके,
2: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
1: अरे वाह इनका पता बताना
2: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5-1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171 वेबसाइट www.arshadlawyers.com We pride ourselves in providing excellent service.
3: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery पास वाले shop से ले सकते हैं ना?
4: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
3: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999 open 7 days find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au 1 by 268 Kingston Road Slacks Creek phone number 3804-3818 that's 3804-3818
5: हाँ दोस्तों हम आ गए हैं वापस और आप रेडियो ब्रिस्बेन सुन रहे हैं आपकी
6: अपने पहचान
5: ओके ऑलराइट कैरी ऑन
6: विद व्हाट
5: सो
6: अ सॉन्ग
5: या व्हाइल आई गेट दिस थिंग ऑफ गोइंग
6: ओके
5: थैंक यू
6: लेट मी प्ले दिस वन हियर

0: और इस समय 20 मिनट रह गए हैं दोस्तों 8 बजने में, और आपको याद रहे इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम रहेगा, और फिर 3 बजे से निविया के साथ
1: निविया के साथ निविया यू मस्ट से ओके।

0: ओके, देखिए दोस्तों, कहते हैं कि आज किसी की जिंदगी बदलना जरूरी नहीं, बस किसी का दिन थोड़ा बेहतर बनाना बना दीजिए। ठीक है, जिंदगी किसी का क्या चेंज करेंगे, अगर हो सके किसी का जिंदगी या दिन थोड़ा बेहतर बना दे ना। यू डोंट हैव टू चेंज समवन्स लाइफ टुडे, जस्ट मेक द डे अ लिटिल बेटर।
1: मेक द डे अ लिटिल,
0: एंड हाउ कैन वी मेक समबडीज डे अ लिटिल बेटर। जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: या इट इज, ऑफ कोर्स इट इज।
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बात भी सही है ना।
1: या व्हाई वरी, बेफिकर, सिंपल
0: बेफिकर। नो, यू हैव टू वरी, बट व्हेन यू कम टू अ सर्टेन एज देन यू डोंट वरी। इट्स द बोनस डेज फॉर यू, यू नो व्हाट आई मीन।
1: या
0: Anyway, I don't know which way this program is going today.
1: No, I too.
0: Anyway, chalo baja do.
1: Kaun se gaana? Kaun se geet?
0: Oh yalla.
1: Kaun se? Zindagi.
0: We played Zindagi Hasne Gaane ke liye already, right?
1: Yesterday. Okay. If you want that song, I have to get that song.
0: Okay. इन द मीन टाइम यहाँ का नंबर फिर बता दूं, 04300031701 है दोस्तों, या 3279-1701, ठीक है।

0: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि अपने दिन को सिर्फ इस बात से मत नापिए कि आपने कितना अचीव किया है. ओके, ठीक है, क्योंकि ये भी एक देख आप में कितनी काइंडनेस आपने दिखाई है ना, कितना पेशेंस रखा और किसी के चेहरे पर मुस्कान आप लाया या नहीं लाया. कभी कभी आपका एक जो छोटा सा अच्छा काम होता है ना, किसी और को जो पूरा दिन बना देता है, यू नो, आपका छोटा सा कोई ऐसा कुछ होगा या कह दिया या काम है, हो सकता है किसी का दिन बन जाए उससे. सो वेरी इम्पोर्टेंट. और लाइफ में हंसना, थोड़ा सा प्यार से लोगों से मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है.
1: Sounds like a song. A song came to my head and it's gone.
0: तुम
1: इस बात के कितनी हस्ती, तुम बात के. Oh, from कभी कभी में.
0: No,
1: not कभी कभी. Was it कभी कभी?
0: No.
1: Silsila. तुम इस बात में कितनी हस्ती.
0: No, not that one.
1: But that song came to my head.
0: Okay, I'll play that song, the one that came to my mind.
1: Okay.

0: राधे?
1: हाँ भाभी।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
14: सांसों की माला पे सिमरूं मैं.
15: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर.

0: ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड चैनलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुख के साथ इतला की जाती है कि दारा के अलहाज शमशेर अली और फातिमा अली के फर्जंद और सलमा बेग, शम्मा अली, साहिबा अली के अब्बा अयाज फरीद अली का इंतकाल कल शाम 6 बजे QE2 अस्पताल में हो गई। जनाजे को आज 1:30 बजे यानी 1:30 PM दारा मस्जिद से माउंट गरेबट कब्रिस्तान ले जाकर ठीक 2 बजे जनाजा की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद मैयत को दफनाया जाएगा। इस खबर के सुनने वालों से गुजारिश की जाती है कि मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करें। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران।
2: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपको बता दूं, जो हमारे डेथ अनाउंसमेंट्स होते हैं दोस्तों, जितने भी इसे कम्युनिटी अनाउंसमेंट है, डेथ अनाउंसमेंट है, इसमें कोई किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। और आप हमारे पास फैक्स करें, फैक्स नहीं यानी कि ईमेल करे या टेक्स्ट करे, ठीक है। और वी हैव टू हैव सम वेरिफिकेशन ना,
3: यस यस,
2: तो देन विल पुट इट ऑन हियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या है,
3: आई प्ले एन ओल्ड फेवरेट। ओके
2: ऑलराइट।

0: जी हाँ दोस्तों, रेडियो मेज़बानी सुन रहे हैं। इस समय 8:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मेज़बानी, आपकी पहचान और
1: अपने आपके अपने पहचान।
0: और याद रहे, अभी कुछ ही देर में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, ठीक है? तो आप कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। और चलिए, आज कुछ थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया है दोस्तों कि क्या बताऊं मैं। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: जी हाँ दोस्तों, और कुछ 8 मिनट रह गए हैं 8-9 बजने में, और आपसे माफी चाहता हूँ दोस्तों, आज हमारा बहुत बिजी था यहाँ आज मॉर्निंग, और खैर क्या बोलूँ आगे अब। चलो सुनते हैं और एक गीत।
4: आई थिंक या ओके।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त। देखिए, जिंदगी की शुरुआत बेहतरीन हो ना हो, हर सुबह की शुरुआत जरूर बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर सुबह के साथ ही धीरे धीरे करके जिंदगी बनती है ना। तो चलिए, अपनी इस बात को याद रखते हुए अपनी सुबह की शुरुआत की जाए। एक बेहतरीन आगाज, एक बेहतरीन शुरुआत रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर, जिस एहसास के साथ आपके साथ सताक्षी है। एंड आई रियली होप कि बहुत मजा आ रहा होगा आपको आज एक बार फिर से आज की सुबह में, क्योंकि भाई जिंदगी जो है वो बदलती रहती है, लेकिन जिंदगी के एहसास कभी बदलने नहीं चाहिए। और इन्हीं एहसासों का दामन थामे हुए अपनी मॉर्निंग को चलिए करते हैं शुरू इस अगली ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए ठापन्स और एंजॉय करते रहिए सुबह को मेरे साथ।

वेलकम बैक, इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इसके पहले कि हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेकर चले हैं, चलिए विश कर देते हैं सबसे पहले उनको जिनके लिए ये दिन और ये पल बहुत ही खास है। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी विश करता है उन्हें जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन बहुत बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारी विश ये जरूर है कि भाई सब ख्वाहिशें हम जानते हैं पूरी नहीं होती, लेकिन आपकी हर जायज मुकम्मल ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी हो। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो शादी खूबसूरत होती है यार, अगर एक सच्चा समझने वाला हमसफर साथ हो, साथ निभाने वाला हमसफर साथ हो, तो जिंदगी खूबसूरत होती है। और वो जिनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आइए आगे चलते हैं और इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सुबह इट हैपन सुन रहे हैं आप, सताक्षी आपके साथ है रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो, कभी कभी हम किसी को भूलना नहीं चाहते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बस वो हमें याद कर दे। मैसेज हम करते नहीं क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो हमें रोक लेती है और सामने वाला भी आपको मैसेज नहीं करता क्योंकि या तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता या शायद वो भी इसी उलझन में है कि क्या कहे, कैसे कहे और क्या मैसेज करे वो आपको। लेकिन इन सबके बीच में ना कई बार रिश्ते बहुत अधूरे रह जाते हैं या खो जाते हैं। जब तक आप इंतज़ार करेंगे कि पहले कौन आगे बढ़े या पहले कौन बात करे, पहले कौन सॉरी बोले, पहले कौन किसी को मनाए, तो ये रूठना मनाना ना आपको, आपके रिश्तों को, दोनों को भारी पड़ता है। दोनों में से किसके लिए रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिपेंड करता है ये जानने के लिए कि आप सामने वाले को मिस कर रहे हैं या आपका उसके साथ रिश्ता जो है, वो बॉन्ड जो है, वो कितना स्ट्रांग है। तो बस जब भी दिल करे कि सामने वाले से बात कर ली जाए, दिल खोल कर करिए। और चलिए आगे लेकर चलती हूँ आपको एक और ट्रैक के साथ। मुझे सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

जिंदगी में तीन चीजें कभी लौट कर नहीं आती हैं, वक्त, समय और सच्चे रिश्ते। अफसोस इस बात का नहीं होता कि वक्त बदल जाता है, दुख तब होता है जब वक्त के साथ सबसे करीबी और सबसे सच्चे रिश्ते बदल जाते हैं। पहले लगता था कि लोग बिजी हैं और शायद इसलिए आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते थे कि चलो हो सकता है कि सामने वाला बिजी हो इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा या मिलने की बात नहीं कर रहा। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ चीजें जब समझ आती हैं तो समझ में आता है कि जो लोग प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं, जो लोग खास होते हैं, करीबी होते हैं, वो आपके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं भले ही कितने भी बिजी क्यों ना हो। इसलिए किसी के पीछे अपने वक्त को जाया मत कीजिए, अपने समय को बदलिए, रिश्ते खुद ब खुद बदल जाएंगे। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। अच्छा।

गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर। तो गानों की हैट्रिक का ये रहा लास्ट ट्रैक और इसके उस पार होंगी ढेर सारी बातें आपके साथ। मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए ठैपन्स रेडियो प्रस्वानी 107.1 FM पर।

0: DSP, big shout out.
1: जिंदगी का सबसे बड़ा वहम क्या है, और वो वहम मैंने कभी नहीं पाला कि मुझे खोकर कोई पछताएगा। क्योंकि क्या है ना कि लोगों को लोग मिल ही जाते हैं, और इसलिए मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बस चलती रहती हूँ, बिकॉज आई डिड माई बेस्ट, नो रिग्रेट, नो जेलसी, नो एक्सप्लेनेशन। तो आप भी ये वहम मत पालिएगा, क्योंकि लोगों का क्या है, जैसे ही लोगों को लोग मिलते हैं कई बार वो आपको भूल जाते हैं, मगर आप अपना बेस्ट देते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे चलते हैं आपको लेकर एक और गाने के साथ। अभी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी पर।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। जिसने अपना सफर जीरो से शुरू किया है ना दोस्तों, वो जानता है मेहनत की वैल्यू क्या होती है। वरना जिसे सब कुछ रखा रखाया मिल गया, वो कहाँ समझ पाता है मेहनत को। वो तो अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ ही नहीं पाता है। लेकिन वो जिसने जिंदगी को मेहनत कर कर के संभाला है, वो जानता है कि मेहनत की कमाई पहली रोटी कितनी शानदार होती है। मेहनत से मिली पहली सक्सेस जिंदगी बदल देती है और जिंदगी के एहसास और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो उन लोगों के नाम जो अपनी मेहनत की एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उनके नाम है ये अगला ट्रैक। सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर।